0: ई लड़का के कब्बू का पिए रही था, कब्बू पेंसिल ले रही था, कब्बू झले फटाका आजी था, का कना हो का कना हो। बाबा के ओस्ट पाटिन गतिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरत।
1: ओहो, ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जलम भर भर बरई थी राहत।
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई ठो, कबू पेंसिल हेरा कई ठो, कबू झोले फटा कई ठो, बढ़िया ठो से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लन बो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उडोक में से, वहाँ झिंगरान दीदी कटरास गोर झोला आन लाटी, ना कबू लड़का कॉपी हेरी थी, ना कबू पेंसिल हेरी थी, ना झोला फाटल हुई थी, कई एक आनंद झोला दस का टस बाटिन, ये बुढ़क ढंग कब्बू पसल छान कर झोला नहीं आना से कठुई।
1: लिया लिया मैं अभी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में, रख गई झोला उद्योग, हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए, पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: ए भन्दै सबै कुरा पाउने रहेछ, लु भन्छ भाउ के पाउँछ त्यहाँ?
4: ए त्यहाँ त्यहाँ त नलका मोटर, ढक तराजु, घरमा लाउने कलर सबै पाइन्छ।
5: ए एभ्रिलाको कुरा गरेको हो, त्यो त मलाई पनि थाहा छ, त्यहाँ त ग्यास, ग्यास चुला, नलकाका सामान, किला काँटा सबै पाइन्छ नि।
6: त्यति मात्र होइन, त्यहाँ त जस्मिन पेन्ट, घर वायरिङका लागि इलेक्ट्रिकका सामानहरू पनि पाइन्छ।
3: भन्दै सबै कुरा पाउने रहेछ।
7: टिकापुरमा रहेको एकमात्र नापतल सामग्रीको आधिकारिक विक्रेता एभ्रिला ट्रेडर्स।
8: विशेष ढक तराजु, डिजिटल तराजु तथा घर निर्माण र भान्साका लागि चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीको लागि सम्झनै पर्ने एकमात्र ठाउँ एभ्रिला ट्रेडर्स,
9: पुरानो ट्रिनिटी स्कुल भएको भवन टिकापुर।
7: प्रोप्राइटर पुष्पराज देवकोटा, सम्पर्क फोन नम्बर 98484-46673 र 98-14-68-02-04।
10: विश्रामपछि खोज खबरमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी खबर, टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 स्थित मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा तीनजना गम्भीर घाइते भएका छन्। वडा नम्बर 9 को खैरीपुच्चकमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा तीनजना घाइते भएका हुन्। हिजो दिउँसो सभा 4 बजेतिर भएको दुर्घटनामा गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर 6 का 58 वर्षीय कमल सुवेदी, सोही ठाउँका 55 वर्षीय बाबुराम तिवारी र लम्केचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 1 का 29 वर्षीय आदिल रिजाल घाइते भएका छन्। सुवेदीको मुख र दायाँ खुट्टामा, तिवारीको कान र निधारमा र रिजालको हात र खुट्टा तथा कम्बरमा चोट लागेको प्रहरीले जनाएको छ। कमल सुवेदीलाई टिकाप्र अस्पतालमा उपचारपछि थप उपचारका लागि नेपालगंज रेफर गरिएको र अरू 2 जना टिकाप्र अस्पतालमा उपचारपछि घर फर्किएका इलाका प्रहरीकारले टिकाप्रले जानकारी दिएको छ। बर्दियाबाट धनगढ़ीतर्फ जाँदै गरेको भेदुई P62-88 नम्बरको मोटरसाइकल र टेकुनियाबाट टिकापुरतर्फ आउँदै गरेको V14P3306 नम्बरको मोटरसाइकल खैरीपुर चोकमा एक आपसमा ठोकिएका थिए। खबरमा अब पालो जनआवाजको, हिजो श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाएको छ। आजको जनआवाजमा हामीले जन्माष्टमी पर्व कसरी मनाउनु भयो भनी केही नागरिकलाई सोधेका छौं।
11: सम्झना कठरिया, तिनकी मेरा व्रत रही, व्रत रही के 5 प्रकार के टीना बनाई थी, गुड़ा हुई पोई जाफे हुई अपन घरे दोसे जाई थी, टीके टीके लहाई जी थी लडे मना, तब आके कहर थी कहार के अगर आसन दे जी थी मने जहाँ जहाँ दे जाए बना तो वहाँ अब बस उतरे हो भूखले रही दिन भर ये कठाई अस्तिम की रही हूँ कृष्ण लग भूखले रही कह के कठाई गई बटवाई थे ना ये मन धर के कहो हमरे दिन भर भूखले रही रात के थी दोसरो आज जैसे साही जुन के तैयार पर थी अब आकाश में डर खेने में डर खी थी दिन भूखे रखी अब तैयार कर टिका कर करना वाके के भूखे आगे जैसे हमें अब खाई ना बसाई जुन खाई ना कावा टिक के केरा हुए पहेड़ा खीरा उरा रहे अमूरा मुरा है आप तो बदरा फल फूल नंथे केरा नंथे श्याव नंथे वैसे इनसे नाई नान के अब तो वही नान के खाई ना करती मैं सही टिका के से के मैंने आगे सही उनके नीप नाप के मजे से सब चीज भई के अग्नि जल चढ़ा के सब कुछ चढ़ा के तब सही उनके व्रत अपन टिका के आके अपन व्रत हो रही थी खाई पर खाई थी दस दिन बिहान के फिर उठी अनि तैयार होके फिर टिकी जीवी टिकटा के लहा लू के आगे फिर जैसे अब 3 प्रकार के जैसे टीना गुडा टीना हुई अच्छा के फ्लोर पकाए थे जब पकाए थे फिर उस तरीके से कुछ कहार के अग्नि दे के लहा लू के टिक के आके फिर खेती पोहा के आके तो बता
12: मोलना सुखराम कटरिया जानकी आठ भग रहा बढ़िया लागल बहुत बढ़िया लागल हमारे कई पुरान संस्कृत चीज चला लाइल वाला चीज के सर्व संरक्षण के लग आगे बढ़े ना मंटी रहना ताकि हमारे संस्कृति बची करना आशा हो
13: मोरना सुगांति चौधरी हो अस्तिम की दहबेर चाहिँ हाम्रा सानके अस्तिनकी काखक दिन डरखै थिए जस्तो कि 12 बजे से पाछा हुई फेर डरखाइ नै मिला ठामा चलन म जस्तो बिहानके दिनभर मुखलर थिए पानी फेर नै पिके 12 बजेसम्म जस्तो कि डोन्या टेप्री लगाके सान्झी कहरना टेप्री हाम्रा अभिसम तथ्य मन नि कहर थिए हाम्रा चलन म डोन्या टेप्री मन कहरना चलन बा जस्तो दिनभर मुखलर थिए 5 बजे पाछा दिन डुब्ना समयमा अपन देउटा दुर्गन थे दिया बाटी बार कहाँ बाट अस्तिम स्थान वहीँ जैठे अस्तिम की टिका के बस का लेल बाटी त फल फूल पहिला कहार के त फल फूल खाइ थी संजय कसो उ संजय कसो रात भर अस्तिम के यहाँ गीत गाई जी थी अपन दिया डाग जगाए रात भर अस्तिम के गीत गाई थी गीत गा कर सेक दसरो जब मुर्गी बोल था तो हमारा अपन ला बिहानी खैना खाना ला तैयारी कर रही थी जैसे की हमारा फरहार करना खाना पकाई थी खाना पका पुक के बिहान हुई था तो हम जैठे अस्तिम की फिर दसरो अपन पुरान फूला ओरा गिल रहत कुलमुला गिल रहत नया नया फूला लेकर फिर जैठे अपन पोहना टेपरी लेकर पहिला तसिरी जलरी जल थर धरती दोसर तसिरी जलरी कलरी पस्तक न गई थी हस्तक न आप हमार अस्तिम किया गीत ढेर से नम्मा बा एक रात करना करना अठनी हो तो एक शब्द में ओराइल गीत हो बिहान के फरहार करके अपन चेली बेटिन वो अग्रासन दी है जी थी हस्तक रमई थी हमार अस्तिम की ओराइल
10: यसै जनावरसँगै खोज खबर सकियो। अन्त्यमा जाँदा जाँदै खबरका मुख्य शीर्षकहरू फेरि एकपटक। बाढ़ीमा परिवार बेपत्ता भएका टीकापुरका नागरिकका घरमा खाना पाक्छ तर गलामा गाँठ जान्न बेपत्ताको खोजी चाँडो हुनुपर्ने उनीहरूको माग। शिक्षा स्वास्थ्यमा ठूलो लगानी भए पनि भजनीमा बाल विवाह नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बाल विवाह नियन्त्रण गर्न सरकारवालाहरू जुट्न आवश्यक। जानकी दुई परागीपुरमा धूमधामले मनाउँदै आएको गौरा पर्व यस वर्ष सामान्य तरिकाले मनाइयो देशको अवस्थाले गौराको रौनकता घटेको स्थानीयको भनाई र महाकाली तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन आग्रह। अहिलेलाई खोज खबर यति नै। प्राविधिक मित्र दिपेन्द्र भट्टराईलाई धन्यवाद दिँदै अहिलेको खोज खबरबाट म ईश्वर सावत विदा हुन्छु। सामुदायिक रेडियो टीका प्रोग्राम सुन्दै गर्नुहोला। नमस्कार।
14: छिच्छी कस्तो गनाएको इनका सन्तानले टोयलेट गनाएरै मार्ने भए फेरि छिमेकीको गाली पाइने भयो के गर्ने होला घरमा पुरुष पनि छैनन्।
15: ए दिदी पनि कति डराउनु भएको कोही चाहिँदैन फोन गरेपछि तुरन्तै सेवा उपलब्ध गराउने आदित्य सेफ्टी ट्याङ्की सरसर्वेश सेवा छँदैछ नि।
14: कता छ त त्यो
15: जता भए पनि फोन गर्नुहोस् न तुरन्त आइहाल्छ नि।
14: फोन नम्बर कति हो भाइ?
15: आदित्य सेफ्टी ट्याङ्की सरसफाई सेवाको सम्पर्क नम्बर 97620203000 हो। अर्को पनि छ 98 65 69 20 26।
14: तपाईँको पनि टिकापुर जानकी जोशीपुर भजनी सप्ती राजापुर गेरुवा र लम्कीमा सेफ्टी ट्याङ्की गोबर ग्यास र रिङवाला टोयलेट सरसफाई गर्नु परेमा आदित्य सेफ्टी ट्याङ्की सरसफाई सेवालाई सम्झिनुहोला। सञ्चालक शेरबहादुर थारू। सम्पर्क नम्बर 97620203000 र 98656 92 026।
16: झरी र बाढ़ीको मौसममा ओभानो ठाउँ खोज्दै सर्पहरू जमिन बाहिर निस्किन थाल्छन्। यस्तो बेला सर्पले टोक्न सक्ने भएकाले यी कुराहरूमा चनाखो हुने गरौं। सुत्ने बेला झुल लगाउने, घर वरपर सर्प लुक्न सक्ने ठाउँको पहिचान गर्ने र ख्याल राख्ने, राति हिँड्दा लट्ठी बोकेर र टर्च लाइट बालेर हिँड्ने, सकेसम्म झाडीतिर नजाने र बाहिर हिँड्दा हात खुट्टा पूरै छोपिने गरी लुगा लगाउने, घुँडासम्म आउने कम्बोट लगाएर जाने, ढुङ्गाको पर्खाल, लडेका काठ, दाउराको चाङ उठाउँदा वा चलाउँदा विशेष ध्यान दिने, मुसा, छेपारो, भ्यागुता धेरै देखिने ठाउँमा सर्प आउने सम्भावना बढ़ी हुन्छ। सर्पले टोकिहाले धामी झाँक्री कहाँ नगई जति सक्दो चाँडो बिरामीलाई अस्पताल वा सर्पदंश उपचार केन्द्रमा पुर्याउने। बेलैमा होसियार भए आफू पनि बचिन्छ, अरूलाई पनि बचाउन सकिन्छ।
10: टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 3 द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
17: जय भोले, जय भोले, बम बम भोले। हिन्दू महिलाहरूको महान चाड हरितालिका तीज 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै दुर्गा ज्वेलर्समा एक नम्बर सुनबाट निर्मित माइली तिलरी, छड्के तिलरी, रामलीला झुम्का, पिजडा झुम्का, बाला, औठी, पेण्डल, चन्द्रमा र अर्डर गरे अनुसार सुन चाँदीका गरगहनाहरू बिना रसायनका बनाइनुका साथै खरिद बिक्री पनि गरिन्छ। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला।
18: दुर्गा ज्वेलर्स, बलभद्र चोक नमुना इन्टरप्राइजेस नजिकै टिकापुर कैलाली, संचालक देव बहादुर सुनार, सम्पर्क नम्बर 9868404।

0: हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै लक्की ट्रेडर्स टिकापुरमा एनटीसी र एनसीएलको सिम कार्ड, ई सिम पाइनुका साथै फोटोकपी, लिमिनेसन, प्रिन्ट, ब्याट्री र ब्यालेन्स ट्रान्सफर पनि गरिन्छ।
1: हराएको मोबाइल एमडीएस प्रणाली द्वारा दर्ता र मोबाइलका सम्पूर्ण पार पूर्जा पाइनुका साथै मर्मत पनि गरिन्छ। साथै 5 मिनटमा पासपोर्ट साइजको फोटो निकालिन्छ। मोबाइलमा फोल्डर हाल्ने र बुफर पनि उपलब्ध गराइन्छ।
0: लक्की ट्रेडर्स सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम नजिकै नेपाल टेलिकम जाने बाटोमा, सञ्चालक खगेन्द्र चौधरी, सम्पर्क नम्बर 9868551000।
2: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकल में जाइस तो?
3: मैं नहीं जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
2: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा, मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैल अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
3: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू, तब तो मैं अब भी जाए।
4: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाट, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
5: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417।
0: हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज 2083 सालको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू लगायतका सम्पूर्ण नेपालीजनहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै एल्विस एल्विरा टेरसमा हरितालिका तीजको उपलक्ष्यमा डिजाइन डिजाइनका साडी, सुट, कुर्ती, पलाजा र थानका कपड़ाहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छन्। एकचोटि सेवाको मौका अवश्य दिनुहोला।
6: एल्विस एल्विरा टेरस, सिद्धार्थ चोक गालप सुपरमार्केट अगाडि टिकापुर कैलाली, सञ्चालक सुजिता श्रेष्ठ, सम्पर्क नम्बर 9811367878।

0: बुका पिएर इठ कबु पेन्सिल इठ कबु झलै फटाका आज इठ काकना हो बाबा फिर ओस्ट पाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनल से तो लड़का सामान नि हेरे
1: ओहो ई बुढा लिख में का हुई थी जरम भर भर भर आई राहत
0: का हुई कबू लड़का कपी हेरा कई ठो कबू पेंसिल हेरा कई ठो कबू झोले फटा कई ठो बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चेक ठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गया झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल हेरे थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला जस का टस बाटी ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिकला झोला है मरमर फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373
3: मानसिक समस्या भएका बिरामीहरूका लागि सुनौलो अवसर अबदेखि टीकापुर अस्पतालमा मनोचिकित्सक डाक्टर लीला देवकोटा हरेक महिनाको प्रत्येक शनिबार आउँदै हुनुहुन्छ ससानो कुरामा तनाव हुने बारम्बार मनमा एउटै कुरा खेलिरहने कुलतमा लाग्ने छटपटि हुने मुटु धेरै ढुकढुक हुने जीवनदेखि निराश लाग्ने जस्ता मानसिक समस्या भएका नयाँ तथा पुराना बिरामीहरूले यही भदौ 20 गते र 27 गते शनिबारका दिन बिहान ठिक 10:30 बजे अस्पतालको कोठा नम्बर 1 सम्पर्क राख्नुहोला। टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली

0: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।
1: बाबु ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
2: मैं नहीं जाऊं, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
1: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई को। यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा, मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
2: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
3: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुस्ता तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाग, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुस्ता रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव, खटीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
4: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417।
5: टीकापुर नगरपालिका को सूचना।
2: टीकापुर नगरपालिकाको आर्थिक ऐन 2078 बमोजिम कर तिरी नगरको विकास निर्माणमा सहभागी बनौ।
5: नगरपालिका कार्यालयलाई तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर चुक्ता नगरे नगरपालिकाबाट प्रवाह गरिने कुनै पनि सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन नगरपालिका कार्यालय बाध्य हुने छैन।
2: कर तिर्नु सबै नगरवासीको कर्तव्य हो भने सेवा प्राप्त गर्नु अधिकार हो।
5: त्यसैले कर तिरौं, सभ्य र जिम्मेवारी नागरिकको परिचय दिऊ।
2: समयमै कर तिरौं, जरिवानाबाट बचौं।
5: कर सम्बन्धी विस्तृत जानकारीका लागि टीकापुर नगरपालिकाको कार्यालय राजस्व उपशाखाको फोन नम्बर 0915608383 सम्पर्क गर्न हुन अनुरोध छ।
2: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर कैलाली।
6: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टीकापुरमा बच्चादेखि बुढासम्म, टाउकोदेखि घुँडासम्मको उपचार।
2: टिचिङ हस्पिटलबाट एमडी अध्ययन गरी अनुभव प्राप्त फ्यामिली फिजिसियन डाक्टर सरोज खनालबाट बिरामीको जाँच तथा उपचार हुँदैछ।
6: आरोग्य मेडिकलमा पाइने सेवाहरू:
2: दीर्घ रोगीहरू, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, थाइराइड, दम, सीओपीडी,
6: नवजात शिशुदेखि वृद्धसम्मको सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा,
2: बालबालिकाको स्वास्थ्य परामर्श तथा उपचार,
6: महिलाका समस्या, गायनोलोजिकल समस्या, गर्भावस्थाको जाँच,
2: सामान्य रोग, ज्वरो, खोकी, पेट दुखाई लगायतको उपचार,
6: आकस्मिक रोगको प्रारम्भिक उपचार र व्यवस्थापन,
2: र हाम्रो यहाँ भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ।
6: सम्पर्क आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टीकापुर।
2: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म र साँझ 4 बजेदेखि 8 बजेसम्म।
6: सम्पर्क फोन नम्बर 9868080008 र 9825637772।

0: हेलो, आदित्य सेफ्टी ट्याङ्की सरसफाई हो?
1: हजुर हो।
0: महिन राजापुर बजारमा ट्याङ्की सफाई गर्न बा?
2: आफ्नो कण्ठे टिकापुर जानकी जोशीपुर भजनी सत्ती राजापुर गेरुवा ओ लम्की मन सेफ्टी ट्याङ्की गोबर ग्यास ओ रिङवाला टोयलेट सरसफाई कर परिकल से आदित्य सेफ्टी ट्याङ्की सरसफाई सेवा हान सम्झवे। संचालक शेरबहादुर थारू, सम्पर्क नम्बर 97 26 20 300 हो 98 656 92 026।

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के बिहान 9 बजे के खोज खबर में यहां हुक रहिन स्वागत बा। खोज खबर से छपिलाल चौधरी के राम राम। अब अपनी सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप्स हाम्रो पात्रो और नेपाली पात्रो में फिर सुन्ती बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से। आज थारू समुदाय अष्टिम की पर्व के फरहार कई कब मनाईटी। बहिया में परिवार बेपत्ता हुईलक टीकापुर के नागरिक के घर में खैना पाकर तहू यहां से नहीं जाए बेपत्ता के खोजी हाली हुई पर ना हुकन के मांग। रसुआ बहिया में मुइया 1344 के सब फैला झंड 5000 आमी बेपत्ता। देशभर मनसूनी वायु के प्रभाव आज 6 प्रदेश में भारी वर्षा के संभावना। ओ शिक्षा स्वास्थ्य में भारी लगानी हुई लसेफे भजनी में बाल विवाह नियंत्रण चुनौतीपूर्ण बनती। आप पूरा खबर आज अष्टिमकी के दूसरा दिन फरहारक दिन आजुक दिन अष्टिमकी के व्रत बैठल थारू महिला हुक्र सरसफाई कई कर व्रत टूटना दिन के रूप में फैले जाए। आजुक दिन बिहानी काली संध्या के बेला अष्टिमकी टिकल घर जाके फिर से अष्टिमकी टिक के अष्टिमकी टिकक लाख प्रयोग हुईलक सामग्री है लगघक लदिया कुलवा में जाके असरैना करथ वो रोग व्याधि नहीं लागस कहकर लहाखोर कहकर व्रत टूटना करथ। असी का व्रत टूटाइबे 3 वा 5 मेरा एक तीना कहार के शारीरिक तेल वा डांठ से आगी में धुपैना वो दादू भयन के लाग अग्रासन के रूप में छुट्टीना चलन बा। अग्रासन के रूप में छुट्टेल भाग फे डीह जैना चलन बा। थारू समुदाय में पाचक समय ई अष्टिमकी मनैना चलन घटती गेल बा। ई एक ठो संस्कृति हुईलक मार यही है संरक्षण कर आवश्यक देख जाए। टीकापुर 5 मौधनिया के श्री कृष्ण चौधरी के 63 वर्षीय बाबा पहल पटक रसुआ में काम कर गेल रहिन। 3 छाई वो एक छावा रहल रसुआ बहिया पाछा संपर्क विहीन हुईलक वहां के घर में छाई छावा वो नट्याहुकर बैठकर बिलौना करती रहल बाट। वहां के छाई रामकुमारी चौधरी सांस नहीं हुईल से फिर लाश पाया जाए कि कई का आस आमी रहल बतैती दुख के समय में क्यों नहीं लग बटेल बाट। वहां हुकर चितवन संपुक सकु अस्पताल सम खोजी गई का लौटल लौटल फे बाट। वह वड़ा के कमल बहादुर चौधरी के घर में फे वस्ते हैं दुख बा। आपन ट्रैक्टर चलेना कमल बहादुर संघरिया हुकर रसुआ जाय लागल पाछ देख के बरखा में कुछ कमाई करूं कई का उहरे लगल। ससुरवा हेरेल खबर सुनल गर्भवती पटोहे 81 गाढ़ो हुई पाछ नेपालगंज में शल्यक्रिया मार्फत सुत्केरी कराई पड़लिन। 7 महीना में बच्चा जन्मलक बच्चा सघन उपचार कक्ष में धैगिल बा। कमल बहादुर के छावा दुर्जे चौधरी एक उहर बाबा बेपत्ता हुईलक और उहर श्रीमती वो बच्चा अस्पताल में महंगा उपचार हुईती रहलक मार पीड़ा बढ़ल बतैल बाट। वह ओड़ा के चंद्र बहादुर थारू फे बेपत्ता बाट। भारत में कमाई गैलक वहां के छाई छावा फे लौटी बाट। घर में अक्कल हे रहल वहां के श्रीमती पंछी चौधरी कुछ स्वाच स्याकत नहीं हुई छाई छावा वो श्रीमान मिलके घर बनाई जग डाल बाट। सक्कू मिलके पक्की घर बनैना योजना बाटिन। पहिल पटक काम में घर से निकललक श्रीमान के बहिया पाछ अटो पटो नहीं हिल पाछ वहां पीड़ा में बाट। टीकापुर नगरपालिका से रसुआ में हाइड्रो पावर में काम के लग गैलक 34 जना संपर्क विहीन हुईलक टीकापुर नगरपालिका के तथ्यांक बा। आ बहिया पीड़ित के खोजी के लाग पालिका से पहल करती रहल बा। पालिका असिन बेला मनैन मानसिक रूप में विक्षिप्त हो जाए कई का मनोसामाजिक सेवा समेत देती रहल स्वास्थ्यकर्मी उषा भूषाल बटैल बाट। याकर साठा नगर स्तरीय विपद व्यवस्थापन समिति के बैठक भोटे कोशी बहिया में फसल के खोजी के लाख गृह मंत्रालय सहित सरोकार वाला पत्रचार करना जनप्रतिनिधि के नेतृत्व में खोजी के लाख पहल करना निर्णय हुईलक कार्यवाहक नगर प्रमुख राम बहादुर नगरजी बतैलबाट। हाल देशभर मनसूनी वायु के प्रभाव रहल बा। हाल मनसून के न्यून चापीय रेखा सदर ठाव से उत्तर उहर हुईल बा। देशभर साधारणतया बजरी लागल बा। कोशी बागमती और गंडकी प्रदेश के कुछ ठाव में लुम्बिनी और कर्णाली प्रदेश के थोरसे ठाव में वो मधेश और सुदूरपश्चिम प्रदेश के एक दुई ठाव में हल्का वर्षा हुईती रहल बा। आज दोपहर देशभर सामान्यतया बजरी लगुआ बा। देश के हिमाली भूभाग के कुछ ठाव में चट्यांग सहित मध्यम वर्षा के संभावना बा। देश के पहाड़ी भाग में ढेर ठाव में चट्यांग सहित मध्यम समय के वर्षा के संभावना बा। कोसी लुम्बिनी वो सुदूरपश्चिम प्रदेश के तराई भूभाग के ढेर तथा मधेश प्रदेश लगायत बागमती और गंडकी प्रदेश के तराई भूभाग के कुछ ठाव में चट्यांग सहित मध्यम समय के वर्षा के संभावना बा। कोसी बागमती और गंडकी प्रदेश के हिमाली और पहाड़ी भूभाग कर्णाली प्रदेश के पहाड़ी भूभाग वो लुम्बिनी और सुदूरपश्चिम प्रदेश के पहाड़ी तथा तराई भूभाग के एक दुई ठाव में भारी वर्षा के संभावना बा। आज रात देशभर साधारणतया बजरी लगुआ बा। देश के हिमाली और पहाड़ी भूभाग के कुछ ठाव में चट्यांग सहित मध्यम समय वर्षा के संभावना बा। देश के तराई भूभाग के कुछ ठाव में चट्यांग सहित मध्यम समय के वर्षा के संभावना बा। सुदूरपश्चिम प्रदेश के पहाड़ी और तराई के भूभाग के एक दुई ठाव में भारी वर्षा के संभावना रहल महाशाखा जनाइल बा। भोटे कोशी लद्या में अलग विनाशकारी बहिया में पर्क 1344 के सब फैला पड़ल बा। नेपाल प्रहरी सार्वजनिकरल पाछक अध्यावधिक तथ्यांक अनुसार 4898 जना आमी बेपत्ता बाट। प्रहरी के अनुसार फैला पड़ल 1344 सब मध्य 489 पुरूष 269 महिला 52 बालक ओ 33 बालिका रहल बाट। और 501 ठोस सबके आंशिक अंग फैला पड़ल बा। जाकर पहचान हुई बाकी बा। बेपत्ता हुई या 4898 जना मध्य 2930 जना नेपाली ओ 618 जना विदेशी नागरिक बाट। नेपाली बेपत्ता हुकनमा 2448 पुरूष ओ 482 महिला रहल बाट। 1350 जहन बेपत्ता हुईलक जानकारी फोन मार्फत प्राप्त हुईलक प्रहरी जनाइल बा। बहिया प्रभावित क्षेत्र में हालसम 8631 जहन के जीवित उद्धार कई गिल बा। उद्धार कई गिल हुकन के 7387 नेपाली ओ 1244 विदेशी नागरिक रहल बाट। विस्थापित हुईलक 3655 जहन हालसम फे होल्डिंग सेन्टर में धैगिल बा। खोज तथा उद्धार काम के लाग 7212 जना प्रहरी जनशक्ति परिचालन कई गिल बा। उद्धार के क्रम में 65 जना प्रहरी कर्मचारी बहिया से प्रभावित हुईल बाट। कलसे 25 जना प्रहरी आमी संपर्क विहीन रहल बाट। फैला पड़ल सब मध्य 1030 थो जमीन में गार के व्यवस्थापन कई गिल बा। मृतक के पहचान के लाग डीएनए संकलन कार्य फिर तीव्र पार गिल बा। हालसम 1260 मृतक ओ 972 मृतक के आफंत कई का कुल 2232 जहन के डीएनए नमूना संकलन कई गिल बा। पहचान हुई नई सैकल 1270 जहन के विवरण वेबसाइट में अपलोड कई गिल बा। खोज खबर में शिक्षा स्वास्थ्य में भारी लगानी हुई लसेफे भजनी में बाल विवाह नियंत्रण चुनौतीपूर्ण बंती लगायत के खबर पलिबा सुनती रवि सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: यो खाने मन तो कहाँ छ र तर के गर्नु जीवन एक्लो एक्लो लाग्छ फेरि खानै पर्छ।
2: तपाईं एक्लो कहाँ छ श्रेया त्यति माया गर्ने आमा छिन् दिदी छिन् भाइ छ बरु एक्लो त म छु। म पनि पहिले आफूलाई एक्लै सम्झिन्थे कुलत छुटेपछि पो थाहा पाएँ यो सुन्दर संसार कति सुन्दर रहेछ बाँच्नु पर्छ अनि पो संसारको मजा लिन पाइन्छ।
1: हो र तेरो त अहिले टन्न कमाइ छ र त्यसो भन्छ
2: अनि सुधार गृहमा बसेको बेला कसको पो कमाई हुन्छ त? जब म निस्के काम गर्न थाले अनि पो कमाई छ त? यो कमाई पनि मेरो लागि होइन, हिजो मेरो कुलतमा हुँदा आमा रुँदै रुँदै जानुभयो, अब घरजम गर्नु छ, श्रीमती छोराछोरी होलान् उनीहरूको लागि पनि सोच्दैछु म।
1: ओहो, तैले त साँच्चै एक्लो हुँदा पनि भोलिको सुन्दर संसार सोचिसकिस् जस्तै यार। अब म पनि कुलत छोड्छु, आमा दिदी भाइ सबै परिवारलाई खुसी बनाउँछु, भोलिको जीवन सुन्दर बनाउने कोसिस गर्छु।
3: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
4: टिकापुर नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।
5: टिकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
4: टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर।
0: खोज खबरमा बचल खबर, शिक्षा स्वास्थ्यमा भारी लगानी हुइलसेफे भसनीमा बाल विवाह नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण देखिल्बा। बाल बालिका कुलतमा फस्ना वो बाल विवाह कैक पढ़ाई छोड़ना छोराबेर चुनौती बढ़ल बताइल्बा। भसनी नगरपालिका के नगर प्रमुख केवल चौधरी बाल बालिका के शिक्षा व स्वास्थ्यमा भारी लगानी कर लसेफे बाल मैत्री पालिका बनाई पूरा करपना सूचक पूरा कर कठिनाई हुई रह बटैलबाट। बाल बालिका के क्षेत्रमा नगरपालिका करतेलक खर्च के बारे में बाल कल्याण संघ से भजनी में आयोजना करल समीक्षा कार्यक्रम में प्रमुख चौधरी असिन बटैलक हुई। प्रमुख चौधरी गरीबी से कुलत ओ बाल विवाह कैक विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ना चिंता के विषय रहल बटैलबाट। गैर सरकारी क्षेत्र के लगानी ओ सहयोग के प्रशंसा करती नगर प्रमुख चौधरी सामाजिक समस्या के समाधान के लाग सकु क्षेत्र के साझेदारी के अपेक्षा करलबाट। भजनी नगरपालिका में विद्यार्थी बीच में पढ़ाई छोड़ना हो बाल विवाह करना बाल बालिका रोक चुनौतीपूर्ण बा। महुन्याल मावी के प्रधानाध्यापक विद्या भट्ट बाल विवाह पाछा जन्मल बाल बालिका नागरिकता विहीन अभिभावक के संतान भारत में हुईना भाजक कारण गैल वर्ष 64 हो यी वर्ष 32 बाल बालिका के जन्म दर्ता नै हिलक हो। हुकन देहल पाठ्य पुस्तक दिवा खाजा बेरोजी ऐन करल बटैलबाट। समीक्षा कार्यक्रम में स्वास्थ्य शाखा से छत्रबहादुर बुढ़ा, शिक्षा शाखा से देवराज अवस्थी, महिला बाल बालिका शाखा से रिजू चुकाह लगायत नगरपालिका से यी क्षेत्र में हिलक बजेट के बारे में जानकारी कराइल। बाल कल्याण वर्षेनी बाल बालिका के क्षेत्र में विगत वर्ष में हुईल खर्च के समीक्षा करती चालू वर्ष के बजेट के विश्लेषण करना करल बाल कल्याण संघ के सोनू चौधरी बटैलबाट। सुदूरपश्चिम के मुख्यमंत्री खगराज भट्ट प्रदेश में हाल सम हुईल जोखिम के अध्ययन कैक नीति निर्माण कैजिना बटैलबाट। मुख्यमंत्री हुईल पाछ पहले पटक गिरह जिल्ला डडेलधुरा पुगल। मुख्यमंत्री भट्ट नेपाल पत्रकार महासंघ डडेलधुरा से आयोजना करल पत्रकार सम्मेलन में असिन बटैलक हुई। खोज खबर में खबर आमी परिवार सुन्ती रवि सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
6: हिन्दू महिलाहरूको महान चाड हरितालिका तीज 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै दुर्गा ज्वेलर्समा 1 नम्बर सुनबाट निर्मित माइली तिलरी, छड्के तिलरी, रामलीला झुम्का, पिंजडा झुम्का, बाला, औठी, पेण्डल, चन्द्रमा र अर्डर गरे अनुसार सुनचाँदीका गरगहनाहरू बिना रसायनका बनाइनुका साथै खरिद बिक्री पनि गरिन्छ। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला।
7: दुर्गा ज्वेलर्स बलभद्र चोक नमुना इन्टरप्राइजेस नजिकै टिकापुर कैलाली। संचालक देव बहादुर सुनार। सम्पर्क नम्बर 9868 40 16 60।
8: बाबु ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस्तो?
9: मैं नहीं जाऊँ,
8: उहाँ आफन अनुहार बिगर्के घर से बाहर नै निकर्थु।
9: उहे मारे तो तुहिन उहाँ पठाइदो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होइसे उपचार हुई तो वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए।
8: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए।
10: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरो शनिवार काठमाडौं के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाग, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुईल घाव, खटीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9846-77417।
0: खोज खबर में आप बचल खबर, टीकापुर में मोटरसाइकिल दुर्घटना हुई बेर तीन जना गंभीर घायल। टीकापुर नगरपालिका वड़ा नंबर 9 खैरीपुर चौक में मोटरसाइकिल दुर्घटना हुई बेर तीन जना घायल हुई बाट। काल दोपहर के 4:15 बजे उहर हुईलक दुर्घटना में गुलरिया नगरपालिका वड़ा नंबर 6 के 58 वर्षीय कमल सुवेदी, उह ठाउं के 55 वर्षीय बाबूराम तिवारी ओ लम्कीचोहा नगरपालिका वड़ा नंबर 1 के 29 वर्षीय आदिल रिजाल घायल हुई बाट। सुवेदी के मुहमा ओ डाहिन ग्वार में, तिवारी के कान ओ लिलहार में, ओ रिजाल के हाथ द्वारा ओ कमर में चोट लागल प्रहरी जनाइल बा। कमल सुवेदी टीकापुर अस्पताल में उपचार पास, थप उपचार के लाख नेपालगंज रेफर कैगिल बा। ओ और दुईजना टीकापुर अस्पताल में उपचार पास घर लौटल, इलाका प्रहरी कार्यालय टीकापुर जानकारी दिहल बा। बर्दिया से धनगरी उहर जैटी करल भे 2P6288 नंबर के मोटरसाइकिल ओ तिकुनिया से टीकापुर उहर आईटी करल भे 14P3406 नंबर के मोटरसाइकिल खैरीपुर चौक में एक आपस में ठोक गिल रहा। यह समाचार संग खोज खबर ओराइल, अंतिम में जैटी जैटी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक एक फ्यारा फेर से। आज अस्तिंकी के दूसरा दिन, थारू समुदाय अस्तिंकी पर्व के फरहार कई के मना जैती। बहिया में परिवार बेपत्ता हुई लग, टीकापुर के नागरिक के घर में खैना पाकर तह घया समस्या गास नहीं जाए, बेपत्ता के खोजी हाली हुई पर ना हो कन के मांग। रसुआ बहिया में मुइया 1344 के सब फैला, झंडा 5000 आमी बेपत्ता। देशभर मनसूनी वायु के प्रभाव, आज 6 प्रदेश में भारी वर्षा के संभावना। ओ शिक्षा स्वास्थ्य में भारी लगानी हुई लसेफे, भजनी में बाल विवाह नियंत्रण चुनौतीपूर्ण। लीता अब खोज खबर, प्राविधिक मित्र दीपेन्द्र भट्टराय धन्यवाद देती। अब खोज खबर से मई छपीलाल चौधरी फिर विदा हुई टू। सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुनती रवि, राम राम।
10: आरोग्य मेडिकल सेंटर एंड क्लिनिक टीकापुर में बच्चा देखि बुढ़ा सम्मा, टाउको देखि घुड़ा सम्मा को उपचार।
11: टीचिंग हस्पिटल बाट एमडी अध्ययन गरी अनुभव प्राप्त फैमिली फिजिशियन डाक्टर सरोज खनाल बाट बिरामी को जांच तथा उपचार हुँदैछ।
10: आरोग्य मेडिकल मा पाइने सेवाहरू,
11: दीर्घ रोगीहरू, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड, दम, सीओपीडी,
10: नवजात शिशु देखि वृद्ध सम्मको सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा,
11: बाल बालिका को स्वास्थ्य परामर्श तथा उपचार,
10: महिला का समस्या, गायनोलोजिकल समस्या, गर्भावस्था को जाँच,
11: सामान्य रोग, ज्वरो, खोकी, पेट दुखाई लगायत को उपचार,
10: आकस्मिक रोग को प्रारंभिक उपचार व्यवस्थापन,
11: र हाम्रो यहाँ भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ।
10: सम्पर्क आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टीकापुर।
11: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म र साँझ 4 बजेदेखि 8 बजेसम्म।
10: सम्पर्क फोन नम्बर 9868080008 र 9825637072।
12: लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवाका लागि टिकापुर अस्पतालमा रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसीसँग सहकार्य गरौं।
13: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि?
12: ओसीएमसी भनेको लैंगिक हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा, चिकित्सा जन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण, आवश्यक मनोविमर्श सेवा, आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्थापना, जीविकोपार्जन तथा कानूनी सहयोग र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तोकिएको केन्द्र प्रदेश वा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरिएको संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो।
13: ओसीएमसीले के सहयोग गर्छ त?
12: यस अन्तर्गत 2078 सालबाट टिकापुर अस्पतालमा पनि ओसीएमसी स्थापना भई लैंगिक हिंसा प्रभावित र पीड़कलाई समेत स्वास्थ्य लगायत सूचीकृत सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। त्यसैले कुनै प्रकारको लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टिकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला।
14: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टिकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9854899213, इमेल ocmcticapur@gmail.com।

0: बुका पिएरै ठ कबु पेन्सिलेरै ठ कबु झनै फटाका आजि ठ का कना हो बाबा फे ओस्टपाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनला से त लड़का सामान निहरै
1: ओहो ई बुढा लिखबे का हुई थी जलम भर भर बरैती रहत
0: का हुई कबु लड़का कपी हेराकै ठ कबु पेन्सिल हेराकै ठ कबु झोलै फटाकै ठ बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नि छिक ठो
1: अरे कहाँ से नानम त
0: कहाँ से लनबो वो त कहाँ टीकापुर म रलक रटगैया झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दिदी कटास गोर झोला आनला बाटी ना कबु लड़का कहाँ पिएरै थी ना कबू पेन्सिल रहिथिन ना झोला फाटल हुईन कैक आनल झोला दस काटस बाटिन ये बुढ़ ढंग कब्बू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373

0: संस्कार र संस्कृति के हो भन्ने त सबले बिर्सिसके आजकल। आफ्नो त यही यति कार्पेट नै हो।
1: विगत 35 वर्षदेखिको सुमधुर साथ यति कार्पेट किन्दा कार्पेटको पछाडि यतिको लोगो हेर्न नबिर्सिनु होला। यति कार्पेट, कार्पेटको शहनशाह।
2: हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज 2083 सालको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू लगायतका सम्पूर्ण नेपालीजनहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै एल्विस एल्विरा टेरसमा हरितालिका तीजको उपलक्ष्यमा डिजाइन डिजाइनका साड़ी, सुट, कुर्ती, पलाजा र थानका कपड़ाहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छन्। एकचोटि सेवाको मौका अवश्य दिनुहोला।
3: एल्विस एल्विरा टेरस, सिद्धार्थ चोक गालप सुपरमार्केट अगाडि टिकापुर कैलाली, संचालक सुजिता श्रेष्ठ, सम्पर्क नम्बर 9811638887।
4: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
5: मै नै जाइ, उहाँ अपन अनुहार बिगर के घर से बाहर नहीं निकर्छु।
4: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेल ई पत्रिका में लिखल बा, मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैल अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
5: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगर के परेशान रहू, तब तो मैं अब भी जाए।
6: याद कर भी, मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाट, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रप, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुईल घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
7: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9806477।

0: बुका पिए रही था, कभी पेंसिल रही था, कभी झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा के होस्ट पार्टी गटिलो ठाव से झोला आनला से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जलम भर भर बराई थी रहा था।
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से नानम था,
0: कहाँ से लनबो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से, वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला आनला बाटी, ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, एक आनल झोला दस काटस बाटिन, ये बुरह ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से कठुई।
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में, रत गई झोला उद्योग,
2: झोला उद्योग
1: हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए, पुरान बिगड़ा झोला है मर्म फेकरा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
3: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।
4: समुन्नत समाज का लागि समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम, टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज।

0: घरमा बट्टीको सामान चाहिएको थियो, कहाँबाट किन्ने होला?
1: किन टाढा जानु दिदी, जमारा पारी पेट्रोल पम्प अगाडि न्यू ओम बिजुली भण्डार सप्लायर छ नि, त्यहाँ घर तथा पसलका लागि चाहिने विभिन्न विद्युतीय सामानहरू पाइन्छन्।
0: ए हो र, त्यहाँ कस्तो कस्तो सामान पाइन्छन्?
1: बल्ब, होल्डर, स्विच, तार, बोर्ड, प्लग, एलईडी लाइट, पंखा लगायतका आवश्यकता अनुसारका विभिन्न विद्युतीय सामग्री पाइनुका साथै पुरानो सामान मर्मत पनि गरिन्छ।
0: त्यसो भए अब बिजुलीका सामान किन्न अन्त कतै जानै परेन?
1: हो नि, तपाईँलाई पनि घर कार्यालय वा पसलका लागि बिजुलीका सामान चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस्।
0: न्यू ओम बिजुली भण्डार सप्लायर्स, जमरापारी पेट्रोल पम्प अगाडि, संचालक राम बहादुर चन्द, सम्पर्क नम्बर 9848 59 67 33 र 9851 18 82 46।
2: हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका टेक 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहक वर्ग, नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै रडगैया झोला उद्योगमा विभिन्न डिजाइनका झोला सुगठ मूल्यमा पाइन्छन्। जस्तै स्कूल ब्याग, क्यारिङ ब्याग, लगेज ब्याग, फाइल ब्याग लगायतका विभिन्न डिजाइनका ब्याग अर्डर गरे अनुसार बनाइन्छ र पुरानो बिग्रेको झोला मर्मत गरिन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला।
0: रडगैया झोला उद्योग, मुनुवा रोड, टिकापुर, कैलाली, संचालक रामप्रसाद चौधरी।
3: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
4: मैं नहीं जाई, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल थू।
3: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तो, यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरानी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था, वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
4: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब ही जाए।
5: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाग, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9846 77 417।
6: समयमै आफ्नो घर, परिवारको जन्म, मृत्यु, विवाह र बसाई सराई जस्ता व्यक्तिगत घटना आफ्नो वार्ड कार्यालयमा रहेका पञ्जीका अधिकारी समक्ष दर्ता गरी कानूनी मान्यता प्राप्त गरौं। यसले तपाई हामी सबैलाई कानूनी रूपमा काम गर्न वा गराउन सजिलो हुन्छ।
7: जानकी गाउँपालिका, वडा नम्बर 8 कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
8: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएमके संजेत 5 बजे थारू भाषा खोज खबरमा अपनकन स्वागत बा। खोज खबर समय गीता चौधरी राम राम। अपनौकरा अब सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप से हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो में फिर सुनती रहल बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से। शिक्षा स्वास्थ्य में भारी लगानी भिलसेफे भजनी में बाल विवाह नियंत्रण में चुनौतीपूर्ण। सरकार जोखिमयुक्त स्थान के बसोबास सर्नाकेका कानून बना जैती। ओ 11 दिनसम्म सुरुङ्गो घर से 4 जना के जीवित उद्धार खोजी कार्य तीव्र। शिक्षा स्वास्थ्य भारी लगानी हुइलेसेफे भजनी मन बाल विवाह नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण। देखगिल्बा बाल बालिका कुलटमा फस्ना हो बाल विवाह कर्क पढ़ाई छोड़ना चुनौती बर्लक बटुआ गिल्बा। भजनी नगरपालिका के नगर प्रमुख केवल चौधरी बाल बालिका के शिक्षा व स्वास्थ्य में भारी लगानी कर सेफे बालमैत्री पालिका बनाए पूरा कर पना सूचक पूरा कर कठिनाई हुईलक बटुलाट। बाल बालिका के क्षेत्र मन नगरपालिका कर्तील खर्च के बारे में बाल कल्याण संघ भजनी में आयोजना कलक समीक्षा कार्यक्रम मन प्रमुख चौधरी असिन बटुला फुट। प्रमुख चौधरी गरीबी सेफे कुलट ओ बाल विवाह कर्क विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ना चिंता के विषय हिलक बटुलाट। गैर सरकारी क्षेत्र के लगानी व सहयोग के प्रशंसा करती नगर प्रमुख चौधरी सामाजिक समस्या के समाधान के लाख सबको क्षेत्र के साझेदारी के अपेक्षा कलबाट। भजनी नगरपालिका में विद्यार्थी बीच मन पढ़ाई छोड़ना व बाल विवाह करना बाल बालिका हना रोक्ना चुनौतीपूर्ण बा। महुनियाल मावी के प्राध्यापक विद्या प्रसाद भट्ट बाल विवाह पाछ जन्मलक लड़का पर्का नागरिकता विहीन अभिभावक के संतान हुक्र भारत में हुईना विवाह के कारण गैलक वर्ष 64 व इह वर्ष 32 बाल बालिका के जन्म दर्ता निहुलको हुकनह देगिलक पाठ्यपुस्तक को दिवा खाजा बेरुजू ऐना कलक बटुलाट। समीक्षा कार्यक्रम स्वास्थ्य शाखा से छत्र बहादुर बुढ़ा शिक्षा शाखा से देवराज औस्थी महिला बाल बालिका शाखा से ऋतु चुकाहा लगायत नगरपालिका के ऊ क्षेत्र में हुईलक बजेट के बारे में जानकारी करेलबाट। बाल कल्याण संघ पर्सेनी बाल बालिका के क्षेत्र में विगत वर्ष में हुईलक खर्च के समीक्षा करती चालू वर्ष के बजेट के विश्लेषण करना कलक बाल कल्याण संघ के सोनू चौधरी बटुलाट। भोटेकोशी बाढ़ी से छेटी पुगेला घर से चंडिका श्रेष्ठ के जीवित उद्धार हुई पाछ सुरूंग बाहेक घर भितर फे मने फसलक हुई सेकना देखगिल्बा। भोटेकोशी बाढ़ी पाछ त्रिशुली 3A अपर त्रिशुली 1 ओ ट्री बेट्रावती से हालसम 4 जना के जीवित उद्धार हुई बा। सुरूंग के ट्रैप में पर्लक व छेटी पुग्ल घर में फसलक मनिन के खोजी तथा उद्धार कार्य जारी रहल बा। भोटेकोशी मन बाढ़ी ऐलक 10 व 11 दिन कैकन जल विद्युत के सुरूंग ओ बाढ़ी से छेटी पुगा गिल घर से कैकन हालसम 4 जना के जीवित उद्धार हुई बा। 10 दिन मन काल त्रिशुली 3A से 2 जना के उद्धार हुई रह। आज शनिवार अपर त्रिशुली 1 से 1 चिनिया नागरिक व बेत्रावती मना आनंद श्रेष्ठ के घर से वहां के श्रीमती चंडिका श्रेष्ठ के उद्धार विलक हो। नुआकोट विदुर 10 के श्रेष्ठ अन सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल के इन्स्पेक्टर सुमन बिक के कमान के टोली उद्धार कलक हो। काली शुक्रवार त्रिशुली 3 से संजय शाह व कबीर महर्जन के उद्धार हुई रह। सुरूंग के ट्रैप में पलक मनिन के खोजी व उद्धार कार्य जारी रह। दिन लम्बेटी जाय बेला चिंता बहरती गैल से फे हालसम 4 जना के उद्धार लेकन आशा के संचार करल बा। सरकार जोखिम युक्त स्थान के बसोबास सर्नाकेका कानून बनेना हुईलबा। भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय तैयार पर्लक भूमि संबंधी कुश नेपाल एन हन संशोधन कर बनलक विधेयक मन जोखिम युक्त ठाउँ के बस्ती सर्ना संबंधी प्रावधान धरलबा। लड्या किनार तालतलैया के किनार राष्ट्रीय निकुञ्ज आरक्षा वन क्षेत्र सड़क मापदण्ड भित्र वा अन्य जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबासका तिरलक भूमिहीन दलित वा भूमिहीन सुकुम्बासी अन्यत्र बसोबासकी व्यवस्था मिलाइपर्नाबा प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख बा यी काम प्रस्तावित विधेयक ऐनमा रूपान्तरित हुइल पाछ हुइनाबा तयार विधेयक विधायन एन अनुसार सर्वसाधारणके रायलिह सार्वजनिक करगिलक असिन यी विधेयक अनुसार भूमि प्रशासन सेवा हन स्थानीय तहमा विस्तार हुइनाबा रजिस्ट्रेशन लगायतके काम स्थानीय तहसे सम्पादन करबेर सेवाग्राहीके समय व खर्च बचत हुइना तथा सेवा प्रभावमा संस्था ऐना सरकारके विश्वास रहलबा प्रस्तुत विधेयकमा जग्गा नाप जाँच एन 2019 भूमि सम्बन्धी एन 2021 गुठी संस्थान एन 2033 मालपोट एन 2034 ओ भू उपयोग एन 2076 संशोधन कना व्यवस्था बा विधेयक अनुसार दलित ओ भूमिहीन सुकुम्बासी जग्गा उपलब्ध कराई तथा अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन कना प्रयोजन केलाक नेपाल सरकार केन्द्र व जिल्ला तहमा समिति वा कार्यदल गठन करसेक जिनाबा समिति वा कार्यदलसे जग्गा उपलब्ध कराइना प्रयोजन केलाक भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासी ओ अव्यवस्थित बसोबासी के पहिचान कर्क लगत लेना जग्गा पहिचान गर्न स्थलगत अध्ययन कर्क जग्गा के लगत लेना व प्रमाण संकलन कर्क जग्गा उपलब्ध कराइसेक्नाबा समिति वा कार्यदल नेपाल सरकारके निर्णय बमोजिम विगतमा गठन हुलक विभिन्न आयोग वा कार्यदलसे वितरण कर्गिलक जग्गाके स्वामित्व वा दर्ता श्रेष्ठता वा नक्सा प्रमाणित लगायतके विषयमा देखगिलकके समस्याके समेत समाधान गर्न कलबा खोज खबरमा एक घरिक विश्राम विश्राम पाछै निनीबाटी सुन्तिरै सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम
1: आज भोलि दिनहुँ जसो सड़क दुर्घटनाका घटनाहरू बढ़िरहेका हुनाले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न बाटोमा हिँड्दा बाटोको एकछु भएर हिँड्ने बाटो काट्दा अगाडि र पछाडि हेर्नुका साथै इशारा गरेर मात्र बाटो काट्ने साइकल होस् या गाड़ी चलाउँदा न्यूनतम गतिमा हाँक्ने गरौं कतिपय दुर्घटना आफ्नो नभई अरूको लापरवाहीका कारण पनि घट्ने हुनाले बाटोमा हिँड्दा सजग भएर मात्र हिँड्ने गरौं साथै आफ्ना नानी बाबुहरू तथा घरपालुवा जनावरलाई बाटोमा छाड नछोडौं र आकस्मिक हुने यस्ता दुर्घटनाबाट आफू पनि बचौं अरूलाई पनि बचाऊ
2: जानकी गाउँपालिका एक नम्बर वाडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश
3: हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज 2083 सालको अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण नेपाली जनहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ
4: सुन्नुहोस् न यसपालि तीजका लागि नयाँ गहना किन्ने सोच बनाएकी छु
5: हुन्छ नि तर कहाँबाट किन्ने त
4: अब किन टाढा जानु सिर्जना सुनचाँदी पसलमा जाऊ न त्यहाँ आकर्षक डिजाइनका सुनचाँदीका गहना पाइन्छन् रे
5: ए हो र गुणस्तरीय गहना र उचित मूल्य पनि हुन्छ त
4: हुन्छ नि आफूलाई मन परेको डिजाइन छान्न पनि पाइन्छ अनि विश्वासिलो सेवा पनि
5: त्यसो भए आजै जाउँला नि
4: ल अरूलाई पनि भनौँ है
5: सुनको चमक आकर्षण र विश्वासको साथका लागि सम्झनुहोस्
3: सिर्जना सुन चाँदी पसल तपाईँको रोजाई हाम्रो जिम्मेवारी
5: सिर्जना सुन चाँदी पसल बलभद्र चोक नगरपालिका शिव मन्दिरबाट सरकारी अस्पताल जाने बाटोमा सञ्चालक रूपलाल सुनार सम्पर्क नम्बर 9805943893
6: के तपाईँलाई थाहा छ
7: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर र मानिसलाई असर गर्छ
6: हो र
7: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
6: अनि
7: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन् प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ
6: के छ त विकल्प
7: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढै राखौं
6: विस्तारै गर्दा हुँदैन
7: हुँदैन टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ
6: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ
7: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टीकापुर कैलाली।
1: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार तत्काल पोलिक्लिनिक प्रणाली टीकापुरमा।
8: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधिद्वारा गरिने।
1: समस्याहरू किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू,
8: महिनाको महिनावारी गडबडीको समस्या,
1: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
8: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
1: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा परामर्श सेवा,
8: ईसीजी सेवा,
1: डिजिटल एक्सरे सेवा
8: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा।
1: फोन नम्बर 9844273359 र 9848423359। सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड टीकापुर जालपा देवी मन्दिर नजिकै।
0: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत बा। नुवाकोटके विदुर नगरपालिका स्थित देवीघाटमा रहलक तादी खोलुवा मना 60 मिटर लम्बा एक्रो ब्रिज जडानके कार्य शुरू हिलबा। गैलक भडौं 10 गते रसुवाके भोटे कोशीला द्यामैलक भीषण बाढ़ीके कारण तादी खोलुवामा रहलक पक्की पुल बगाइलपा छ। ऊ क्षेत्रके यातायात सम्पर्क पूर्ण रूपमा विच्छेद हुल रह। बाढ़ीसे क्षति पुगा गिलक पुराना पुलके अबुटमेन्ट हन प्रयोगकर्ती लौ एग्रो ब्रिज निर्माण आग बढ़ा गिलक हो। भटक गिलक सड़क ओ पुलके कारण स्थानीयके आगमन ओ ढुवानीमा पर्लक समस्या हन ध्यानमा धरती नेपाली सेना पुल जरानके नेतृत्व लेलबा। निर्माण केलाक आवश्यक पर्ना सामग्रीके व्यवस्थापन सेना स्वयं कलबा। कलसे प्राविधिक तथा निर्माण सम्बन्धी सक्कु कार्य सेनाके टोली कर्ती रहलबा। एग्रो ब्रिजके जडान सम्पन्न हुइलसँग नुवाकोट आन्जर पाँजरके बाढ़ी प्रभावित क्षेत्रमा नै यातायात सेवा पुनः सञ्चालनमा ऐना ओ सर्वसाधारणके दैनिकी सहज हुन विश्वास लेगिल्बा। रसुवाकी भोटी कोशी लड्यामा ऐलक बाढ़ीसे घर बगाइल पाछ 11 दिनमा चण्डिका श्रेष्ठ जीवित फेला परलबाट। परिवार कुसके सब बनाक काजक्रिया शुरू कर सेकल रह तर उद्धारकर्ता उहाँ नुवाकोटके विदुर नगरपालिका 10 मन अर्धचेत अवस्थामा फेला पारल। त्रिशुलीकी किनारमा अटकलक घर बाढ़ीसे बगाइल रह ओ चण्डिकाके परिवार 8 दिनसम्म ख्वाजा बेर्फी उहाँ भेटाइनी स्याकल रह। रसुवाकी भोटी कोशी लड्यामा ऐलक भीषण बाढ़ीसे घर बगाइल पाछ। परिवार चण्डिका श्रेष्ठके माया मार सेक्ल रह। बाढ़ी ऐलक 8 दिनसम्म अट्टोपट्टो नि लागल पाछ। परिवार कुसके सब बनाक उहाँके काजक्रिया नै शुरू कर सेक्ल रह तर मृत्यु संस्कार चलिरहबेर बाढ़ी ऐलक 11 दिनमन 64 वर्षीय चण्डिका हन उद्धारकर्ता जीवितै फेला पर्लबाट। नुवाकोटकी विदु नगरपालिका 10 श्रेष्ठ हन सशस्त्र प्रहरी बलके प्रहरी निरीक्षक सुमन विकके कमानमा खटगिलक टोली उद्धार कलक हो। बेत्रावती बजार स्थित आनन्द श्रेष्ठके घरसे उहाँ अर्धचेत अवस्थामा निकारगिल रह। उद्धार पाछ हेलिकप्टर मार्फत त्रिशुली स्थित नेपाली सेनाके मैबल ब्यारेकमा प्रारम्भिक उपचार कर्कन उहाँ काठमाडौँके छाउनी स्थित सैनिक अस्पतालमा नलैगिल बा। धनगढ़ी उपमहानगरपालिका 5 सरकार चोक लग्घ धनगढ़ी अर्गानिक एण्ड वेलनेस सेन्टर सञ्चालनमा आइलबा। ऋषिकुलके अर्ध अधिकृत वेलनेस सेन्टरके रूपमा सञ्चालनमा ऐलक केन्द्र स्वस्थ जीवनशैली शारीरिक स्फूर्ति तथा प्राकृतिक स्वास्थ्यसे सम्बन्धित विभिन्न सेवा उपलब्ध गराइना जनैलबा। बसन्ती विष्ट व जयन्त भट्ट विष्टके सहकार्यमा सञ्चालनमा लानगिलक सेन्टर शनिबार 1 कार्यक्रमके बीचमा औपचारिक उद्घाटन करगिलक हो। यद्यपि सेन्टर करिब 1 महिना थेसी सेवा देती ऐलक सञ्चालक बटोइलबाट। सेन्टरमा डिटक्स फूड स्याप्रा टोल व्यवस्थापन एक्युप्रेसर सौना बाथ मसाज नर्भ थेरापी स्मार्ट मसाज स्टीम थेरापी तथा परामर्श लगायतके सेवा उपलब्ध बा। बीसीएमओ एसीएम मेसिन मार्फत रक्त संचार तथा एक्युप्रेसरसे सम्बन्धित सेवा प्रदान गर्जिना जनागिल्बा। सेवा लेखला कुश सेवा गराही लम्मा समय थेसे विभिन्न स्वास्थ्य समस्या लेखन अस्पताल तथा अन्य उपचार केन्द्रमा पुगबेर्फे अपेक्षित राहत निपैलक अवस्थामा उहाँके सेवा हन आपन राहत मिलक अनुभव सुनैलबाट। कतराजना ढिउ ठाउँमा महँगो उपचार करैलक तर स्वाचल अनुसार समाधान निहुलक बटुलबाट। दूर दूरके ठाउँसे जयपना बाध्यताके बाध्यता से आपन प्रदेश में मिलवे सुख ठुलक सेवा ग्राही के कहाई रहल बा सेंटर के संचालक बसंती विष्ट आधुनिक जीवनशैली का कारण मनिन मन शारीरिक सक्रियता घटती गई वर्षे स्वस्थ तथा सक्रिय जीवनशैली प्रवर्धन करना उद्देश्य लेकर वेलनेस सेंटर संचालन में ननलक बटुले वहां के अनुसार प्राकृतिक जीवनशैली खानपान और शारीरिक स्फूर्ति संबंधी सचेतना हाफे केन्द्र प्राथमिकता में लेलबा। खोज खबर में एक घड़ी विश्राम पाछाई निनीबाटी सुनती रहे सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
9: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जैब पाछ से शुरू करल मने घर सिजार सेकल
10: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो नी करत का कहना हो का
9: मिस्तरान बर्जन हो का न घर हेरो ना पट्टा सुगुर बनैला बाट आलमुनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना ओट्ट फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुरो हो ना कबू कहूँ घूम जाए था पाए।
11: यूपीबीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में आलमुनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे
10: मिलन आलमुनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848543426।
12: आरोग्य मेडिकल सेंटर एंड क्लिनिक टीकापुर में छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारे को सूचना छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेंटर एंड क्लिनिक टीकापुर में
13: असोज 3 गते पहिलो शनिवार का दिन आउने भएकाले
12: समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। आरोग्य मेडिकल सेंटर एंड क्लिनिक टीकापुर में उक्त दिन दिइने सेवाहरू छाला में एलर्जी आउने चिलाउने दुख्ने घाउ दुबी को समस्या लाटो र फुस्रो दाग देखिने पुरानो भन्दा पुरानो छाला को घाउ ठीक नहुने समस्या इक्जेमा सोब्रियासिस गोलो दाग बारम्बार उपचार गर्दा ठीक नहुने छाला सम्बन्धी रोग समस्या पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने चिलाउने धातु खस्ने सेतो पानी बग्ने यौन दुर्बलता शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने कपाल चिलाउने चाया पर्ने डेन्ड्रफ कपाल झर्ने रौ नजम्ने तालुको रौ झर्ने समस्या अनुहारमा चाया डन्डीफोर चिरा परेको फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या अनुहार खस्रो हुने फुट्ने चिरा पर्ने अनुहार बाङ्गो हुने समस्या
13: डाक्टर आउने दिन असोज 3 गते पहिलो शनिबार
12: आरोग्य मेडिकल एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टीकापुर एक कैलाली सम्पर्क नम्बर 9868000008 र 9825677772।
0: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत बा। कर्णाली लद्यामा जल सतह बढ़ती गेल बा पाछक 2 दिन यहाँ लद्याके जल सतह 8 मीटर से ऊपर गेल बा शनिबार दिन का 4:40 मा जल सतह 8.95 मीटर पुगल बा जल तथा मौसम विज्ञान विभाग बाढ़ी पूर्वानुमान महाशाखा के अनुसार चिसापानी स्थित कर्णाली लद्यामा बाढ़ी तह 10 मीटर पुग्नहान चेतावनी तह व 10.80 मीटर पुग्नहा खतरा के तह मानगिल बा। नेपाल एसीसी प्रियर कप क्रिकेट मन आइतबार साउदी अरेबिया से सामना करतीबा मलेसियामा हुई रलक प्रतियोगिता के क्वालालम्बरपुर स्थित बायुमास ओभल मैदान में हुईना साउदी अरेबिया विरूद्ध विजय हाट पार नेपाल के सेमी फाइनल प्रवेश निश्चित हुलबा नेपाल पहिल 2 खेल मन कर्मश बहिरान 7 विकेटले व मलेसिया 6 विकेटले कन पराजित कल रह वस्तका आपन पहिल 2 खेल में कर्मश हंगकंग से 16 रन व मलेसिया से 93 रन लेक पराजित साउदी अरेबिया के शुक्रवार तेस्रो खेल में बहिरान 17 रन लेकन पराजित कल रह पहिल दुनू खेल में नेपाल पहिला फिल्डिंग करती उत्कृष्ट बोलिंग करल रह कप्तानी में पुनरागमन करती रलक संदीप लामी छाने पहिल खेल में 7 विकेट लिहल पाछ बहिरान 37 ओवर भितर 87 रन में अलआउट हुई रह संदीप साथ देती ललित राजवंशी तीन ओ करण केसी दुई विकेट लेलरह गैलक महिना के निडरल्याण्ड्स भर्मन थेसी उत्कृष्ट लयमन रहल कारण मलेसिया संघ के खेलमन चार विकेट लेलरह वहां उत्कृष्ट बलिंग पाछ मलेसिया 33 ओभर भितर 103 रन मन अल आउट हुई ललित मलेसिया विरूद्ध के ऊ खेलमन दुई विकेट लेलरह नेपाल पहिल दुनु खेलमन प्रतिद्वंदी हन धीर समय टिक डिहेनी स्याकल यहां आधार बनाईबेर साउदी अरेबिया मफे नेपाल से जीत निकर्ना गारो हुइना डेगिल्बा तर साउदी अरेबिया हाना नेपाल कमजोर पक्कै फे ठानल्नी हो हङकङ संग के पहिल खेलमन 274 रन के विजय लक्ष्य लग्घ पुक्कन साउदी अरेबिया रुवाकल रह यी से हुकन के कर्मांगन ब्याक्टिङ शैली हना देखा जाए ओस्तकन 221 रन रक्षा कर्ना करमन साउदी अरेबिया पाछक खेलमन बहिरान हन 204 रन के स्कोर मन रोकल रह यह समाचार के संग खोज खबर ओराइल अंतिम जैती जैती खबर के मुख्य शीर्षक फिर से शिक्षा स्वास्थ्य मन भारी लगानी हुई लसेफे भजनी में बाल विवाह नियंत्रण में चुनौती पूर्ण सरकार जोखिम मुक्त ठाव के बासोबास करना कानून बना जैती ओ 11 दिनसम्म सुरुङ्गो घर से चार जना की जीवित उद्धार खोजी कार्य तीव्र लिता बक्ला थारू भाषा खोज खबर अत्र और समाचार 6 बजे नेपाली भाषा मना खोज खबर सुन सकबी अब खोज खबर से प्राविधिक मित्र आकाश चौधरी धन्यवाद देती मई गीता फी विदा हुतु सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुनती रवि राम राम
3: हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै लक्की ट्रेडर्स टिकापुरमा एनटीसी र एनसीएलको सिम कार्ड ई सिम पाइनुका साथै फोटोकपी लिमिनेसन प्रिन्ट ब्याट्री र ब्यालेन्स ट्रान्सफर पनि गरिन्छ
5: हराएको मोबाइल एमडीएस प्रणालीद्वारा दर्ता र मोबाइलका सम्पूर्ण पार्ट पुर्जा पाइनुका साथै मर्मत पनि गरिन्छ साथै 5 मिनटमा पासपोर्ट साइजको फोटो निकालिन्छ मोबाइलमा फोल्डर हाल्ने र बुफर पनि उपलब्ध गराइन्छ
3: लक्की ट्रेडर्स सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम नजिकै नेपाल टेलिकम जाने बाटोमा सञ्चालक खगेन्द्र चौधरी सम्पर्क नम्बर 9868551000
5: टिकापुर अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार र बिहीबार बिरामी जांच कर आने छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामी विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली
14: तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: समयमै आफ्नो घर परिवारको जन्म मृत्यु विवाह र बसाई सराई जस्ता व्यक्तिगत घटना आफ्नो वाडा कार्यालयमा रहेका पञ्जीका अधिकारी समक्ष दर्ता गरी कानूनी मान्यता प्राप्त गरौं। यसले तपाईँ हामी सबैलाई कानूनी रूपमा काम गर्न वा गराउन सजिलो हुन्छ।
1: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
2: आइहो बड्डो, घर कहिया सिर्जैब? पाछसे शुरू करल मने घर सिजार सेकल।
3: अरे का करूरी बुढ़िया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू। मिलबो नी करत का कहना हो का
2: मिस्तरान बर्जन हो का ना घर हेरो ना पटा सुगुर बनेला बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना ओट्र फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुरो हो ना कबू कहूँ घूम जाए तो था पाए।
4: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
3: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848543426।
5: सबै बिरामी आखिर स्वस्थ रहन स्वस्थ व्यवहार पनि अपनाउनु पर्यो तर यति हुँदाहुँदै पनि सबै एकलासो कहाँ हुन्छ र कहिले कोही बिरामी कहिले कोही बिरामी म त दिक्क भइसक्यो कसो कालो छिटो नलाग्यो
6: मेरो चाइनाजो माइलो के बर्बर बर्बर कराइरहेको छ के भएको छ तलाई
5: हेर्नु न साह्रै समस्या पर्यो क्या कहिले के रोग आउने कहिले के समस्या आउने म त हैरान भइसके छोरो उस्तै बिरामी छ स्कुल जान पाएको त्यत्रो दिन थन्किया छ बा त्यत्रै बिरामी सबै हैरान भन्यो म पनि यो पेटको बिरामीले कस्तो हुन्छ भोक लागे हुन्छ खानै सक्दैन
6: तेरी माइला यति सानो कुराको लागि यति धेरै चिन्ता लिनुपर्छ त्यसको लागि त हाम्रो टिकापुरमा रहेको चण्डीबाई मेडिकल स्टोरमा गए त भइहाल्यो
7: हजुर स्वदेशी विदेशी औषधिहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छन् साथै समय समयमा विशेषज्ञ डाक्टरहरूको सेवा पनि उपलब्ध छन्
8: सम्पर्क स्थान चण्डीबाई मेडिकल स्टोर ठकरला रोड टिकापुर कैलाली।
9: तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 107.7
10: सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर।

0: Samadamasayam Vishnu Tine Divakara. Samadamasayam Vishnu Tine Divakara.
1: Maharaj Parikshit Lai Sukadev Le Bataun Bho. Yehi Bhanera Bhajan Garna Sahi. Ta Udamada Brahmaji Ko Rupa Majma Vishnu Shiva Astamada Vishnu. Bhaya? Janiyo? Yehi Vasun Jal Matri Hogi. Aba. यो विश्व ब्रह्मांड सारा संपूर्ण आपनो शरीर में ही हो महाराज शीर बने को स्वर्ग मर्ते बने को पात माय मनाभि पाताल बने को पाइताल हो सूर्य र चंद्रमा बने को आँखा है तो यो आँखा बन्न भो भने 12 वटा सूर्य उदय पे उज्यालो हुन्छ र नाक बने को 49 वायु 10 वटा दिशा बने को कान लाज बने को चाहिँ तल्लो ओठ लोभ बने को उपल्लो ओठ लाज राय भने तल्लो ओठ के जन्दे हो के वाचम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत सुन्नन्ति दिव्यै सबैर् वेदी साङ्गे पदाक्रमोपनिषदे गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तम् न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः पृष्ठे भ्रमृतमन्दरमन्दररगि ग्रमे कण्डुयना निद्रालोकमटकृतरे भगवतम् श्वानानिलम् पान्तु एत संस्कार कला नुभरत नमलायसु निशोषम्भाम् यात यात मतन्द्रितम् जननिधिरणा देवी विश्रमेति पुराण संख्या समूत माध्यम से प्रयोजन दानम दान से महात्म प्रदेश निबोधत ब्रह्म दश शास्त्र ने पद्म पंच षटा नीचम श्री वैष्णव त्रय विंशति चतुर विंशति शैवगम दशाष्टौ श्रीमद भागवत नारद पंच विंशति ही मार्कण्डेय नव वर्ण तो दश पंच चतुर्शतां चतुर्दश भविष्यन्दता पंचशतानि च दशाटो ब्रह्म वैवर्त लिंगम एकादश वत चतुर्विंशति वराय गच्छति सहस्रकम् कन्नम शतम तथा वामन दश कृतिताम कुर्म शब्दाख्यात मतम तत्व चतुर्दश विंशति सौपर्ण ब्राह्मण सदस्य वतुम एवं पुराण छंद चतुर्दश उदारित अठादश श्रीमद भागवत विंशति हेम अव्यम श्रीमद भागवत विंशति हेम श्रीमद भागवत मिश्रते हे इदम भागवत नाम ब्राह्मण प्रणामी पंकज हे तिदाय भवति करुणाय प्रकाशित माध्यम अवसाने शुभम वैराग्य ख्यान समेत हरलीला कथा प्रात मृत नंदन सत्सुरम सर्वेदांत सारण दर्शन लक्षणम अस देवती तरणित कबिल प्रयोजन प्रौषपद प्रणमाशी यम सीमा समन्वित दधाति भागवत से हंति प्रमाम गति महाराज ने तदवदानी प्राणानी सदाम गणे यावद भागवत नाम श्रुति मृत सागरम सर्वेदांत सारम श्रीमद भागवत मिश्रते तत्सारा मेरे दुर्दर्शन श्रेष्ठ मिन्न था गंगा मां अच्युतम तथा विष्णुता सम प्राण मिलन तथा क्षेत्र श्रीवैष्णता काशी अनुत्तम तथा प्रणवर्तन श्रीमद भागवतम देजा श्रीमद भागवतम पुराण मामल वैष्णवा प्रिय यस्मिन् परमं समीक कमलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सीतम निष्कर्मामाविष्कृत तक्षण सुप्रभुण विचारण पर भक्ति विमोचन कस्मिन् विवासित यमतुल ज्ञान प्रदीप पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुने कृष्णाय तद्रूपेण योगीन्द्राय तदा मनाथ गुण राधे करुण तत्र सुध मेलं विश्वकर्मा सत्यं परम धीमहि नमस्ते भगवते वासुदेवाय शाक्षणे इदम कृपया कस्मिन् वासे मम सजेन्द्र नमस्ते सुखाय ब्रह्म रूपणे संसार सर्वे द्रष्टव्य मनुष्य मम चतो भव्यदासिति पादस्पद जायते तथा कुरुष देव सनातो सनमेतम प्रभो नाम संकर्तन विशेषत्र पाप प्रणाशन प्रणम दुख सम नमस्तम नमामि हरिम परिम हरि ओम तस्द नाम संकर्तन विशेषत्र पाप प्रणाशन प्रणम दुख सम नमस्तम नमामि हरिम परम हरि ओम तस्द श्रीमद भागवते महापुराणे अठादश सहस्र संहिताय वैयासिक द्वादश स्कन्धे पुराण सांख्या दिवा नाम त्रयो दशो विश्राम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव